सफल है जित सतगुर का मन मने। ओ सेवा कीती हुई परवान है जेड़ी सेवा ते सतगुरु प्रसन्न हो जाए, जेड़ी सेवा सतगुरु नु चंगी लगे।

कालपाए ब्रह्मा बपतरा कालपाए सबजू अवतरा कालपाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देवदैत।

सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर बशानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर बशाने कड़ कड़ के बट बट की जाने जब उद करख कर

कछु भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पैव। आप अपनी बुद है जेती, वर्णत पिन पिन तो हे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज से तिज के ने, उत्पुज खान बहुर रच दीने। कहूं फूल राजा हब बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव, आदि काल स्वरूप सुयम पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार सिख संगरो। दोष जेते उठ बदुद पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दोष दुबता वै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहरे हो, ताके ताप तन कमो हरे हो। हृद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास्व सक न कोई।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बनाइया शब्दों तंगा वो हरी के राम मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

कहे नानक तें सुख हुआ हितकार अनहद वाजी। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बिसूरे। दू

बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंडावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब से आधारो। जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो। ए वास्तव तजी न जाई नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां।

अंतरजामी सब विद जाने तां किस पह आख सुनाइए कहना कथन न पीजै गोबिंब हर भावै पैज रखाइए अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाइए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

गोन गोविंद नित गाई है, साध संग मिल त्याई है, मन बांशत फल पाए, गुर पूरा हृदय त्याए। गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीवै परमानंदा, जन नानक नाम त्याया, प्रभ अपना बिरद रखाया। गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीवै परमानंदा, जन नानक नाम त्याया, प्रभ अपना बिरद रखाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहिला राग जी की महला पहला, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जय करते ताकी है, करते का हुई विचार, वो कित कर गावो सोहिला। सिवरिहो सृजनहारो, तुम गावो मेरे निरपा का सोहिला। हूँ वारी जित सोहिला है, सदा सुख में रहो। नित नित जीअड़े समालियन दे सगा देवनहार, फिर दान कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत जा लिखिया मिल कर पावो तेल, देह सजना सीसड़िया जा होवै साहिब सुमेल। कर कर इहो पहुंचा सदले नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे अवन। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए, सो कर रहा सब डाई सोए राव। बिस जसया कड़िया पहराव, खेती बारी महा हुआ, सूरज को रुत अनेक। नानक करते के वेस, राग तन आसरी महला पहला। गगन मै थाल रव चंद दीपक बने, ताज कमण जनक मोती, धूप मल आनलो पवन चवरो करे। सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पवखंड ना तेरी आरती। अनहता शब्द वायंत तेरी राव, सहस तब नैन नन नैन है तोहे काओ। सहस मूर्त नन एक तोरी, सहस पद विमल नानेक पद गंध रैनो। सहस तब गंध विचल तमोही, सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदै जानन सब मैं जानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावै सु आरती होए। हार चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अनगन मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारिन कौ होइ जाते ते रह नाहि वास। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर भरिया, मिल साधु खंडल खंडाहि। पूर्व लेखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाहि। कर साधु अंजलि पुन वडाहि, कर डंडाओत पुन वडाहि रहाउ। साग धार साधन जानिया, तिन अंतर मैं कंडाहि। ज्यों ज्यों चले चुभ दुख पावहि, जमकाल सहहि सिर डंडाहि। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन मरण पव खंडाहि। अविनाशी पुरख पा परमेश्वर, बसो खंड ब्रह्मंडाहि। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वडाहि। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम ही सुख मंडाहि। राग गौड़ी पूर्वी महला पांजवां, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की वेला, पीहां खाट चलो हर लाहा, गै वसन सुहेला। औध कटै दिन सरहणारे, मन गुरमिल का सवारे राव। हे संसार विकार सासे, मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाई पिया वह रस, अकथ कथा तिन जानी। जा को आई सुई बिहा ज्यो, अर गुर तै मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे, बहोर न होएंगो फेरा। अंतर जा

अंतरगामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की दूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मोरे प्रसादी हर मनवा से आर प्रसादी हर मनवा से आर प्रसादी हर मनवा से आर प्रसादी हर मनवा

पहला गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर तरण न जाई धोती टिका ते जप माली धान मले छा खाई अंतर पूजा पड़े कते बां संयम तुर

0: ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇਲ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਣ ਮਲੇਛ ਧਾਮ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਏਵਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕੇ ਸੱਚੇ ਧਿਆਈਐ ਸੁਚ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਸੁਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਸੂਚਾ ਹੋਈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਜੈਸੇ ਸੂਰੀਏ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੁੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰੀਏ ਦੇ ਚੋਂ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੂ ਬਹੂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਗਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਤਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਊ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਊ ਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰ ਲਾਇਆ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਗਊ ਨੇ ਗੋਬਰ ਕੀਤਾ, ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਗੋਬਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੌਕਾ ਲਿੰਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੌਤਕ ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਦਾ, ਗਊ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਖੇ ਸੁੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਕਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਛਾ ਖਾਈ। ਇਸ ਮੂਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੋਤੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, हाथ देच जप माली भी है माला भी है छोटी लेकिन मलेच्छां दा गुलाम है रोजी उना दे आसरे ते चलांदा है जिन्हा नू मलेच्छ कहिंदा है रोजी भी उना कोल है और उना तो ही रिजक प्राप्त करदा है अंतर पूजा परे कतेबा संजम तुरका भाई अंदर बैठ के छुप के ते पूजा पाठ करता है लेकिन बाहर आके इस्लामी कर्म करता है दिखाण वास्ते ताके हाकम खुश होवन हुक्मरान प्रसन्न होवन तुरका वाला संजम रखता है उना दी मर्यादा दी पालना करता है कतेब इत्यादक पढ़ता है लेकिन अंदर अंदर मूर्ति पूजन करता है अंतर वास्तविक है ओही कर्म करता है जो वैदिक रीति के मुताबिक होने चाहिए ने लेकिन बार नहीं बारों डरता है एक दौर ऐसा लंघिया कि भारत डर गया उन्हों पूजा पाठ करन लगिया भी उख्याई हुई और इतना भयभीत होया कि छुप के लुक के ये पूजा पाठ करता है सामने नहीं करता है तो अंदर ते पूजा पाठ करता है बाहर दूसरे धर्मां दी रूपरेखा ते चलता है महाराज कहने ये पखंड है दिखांदा कुछ हो रहा है करदा तो कुछ हो रहा है अंदर तेरी भावना कुछ हो रहा है बाहर प्रगट तो कुछ होर करदा है पखंड उसनु कहंदे ने कि करे कुछ मनुख ते होवे कुछ इस वास्ते साहिब कहंदे ने छोड़ी लै पाखंडा छोड़ इस पखंड नु नाम लइए जाहे तरंदा परमात्मा दा नाम जप ताही कर सकेगा भव सागर तो ये गोबर तरन ना जाए गोए दे आसरे ते गोबर नु लिपके ना तू पवित्र हो सकदा है ते पवित्र होए बिना ना कोई तर सकदा है ते पवित्र हुंदा है मनुख सच नाल और सच करके ही मनुख भव सागर तो पार हुंदा है अगाह चल के जो जीवन रीति है जिस ढंग नाल जीवन जीविया जा रहे असी महाराज उसका भी जिक्र कर देन महला पहला मानस खाने करे निवास छुरी वगायन तिन गलता दो वड्डे धर्म सन इस देश विच हिंदू ते मुस्लिम महाराज कहिंदे ने जिन्हां दे गल विच जनेऊ है उन्हां दा कम हो गया छुरी चलाना भाव जबर करना जुल्म करना प्राया हक खाना ते मानस खाने करे निवाज जो नमाज पढ़ते ने इन्हों का भी कर्म यही बन गया मनुखा नु खावा मनुख दी रत पीनी बंदे दा लहू पीना भाव दोहां पासियां तो जबर है जदके धार्मिक मनुख कतई जबर नहीं करता अगर धार्मिक मनुख भी जबर करे तो फिर जगत देच कुछ बचदा ही नहीं जे देच कुछ मनुख महक लै सके ते आनंद लै सके धार्मिक मनुख ही ते मनुखी गुलिस्तान दी रौनक है तो साहिब कहने मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गलता जेड़े नमाज पढ़दे ने वो मनुखां दी रत पींदे ने पर जिन्हां ने जनेऊ धारण कीता है वो भी छुरी मारन तो बाज नहीं आउंदे तिन घर ब्राह्मण पूरे ना ऐसे जो छुरी वगा के अपना स्वार्थ सिद्ध करदे ने उन्हां दे घर जाके ब्राह्मण संख पूरदा है क्योंकि ओ इन्हां दे जजमान ने ते जजमान दे घर जाना नाद पूरना संख पूरना उन्हां नू उपदेश देना ब्राह्मण दी रौरी थी इस वास्ते साहिब कहिंदे ने तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद उन्हां दे आवे ओई साध जे उहदियां दा स्वाद खत्रियां नू लगे है कि छुरी वगायन तिन गलताग इस तरह के पुरुषों का ध्यान लेके आखिर ब्राह्मण नू भी ओहो जिहां दा ही स्वाद आना है आम साडे देश विच एक गल प्रचलित है कि जैसा अन्न तैसा मन जैसा पानी वैसी वाणी मनुख दे बोल चाल दते बहुत सारा पानी का प्रभाव, मनुख दे मन देते अन्न का प्रभाव, ये आम साडे देश दे कहावत है। किस ढंग नाल रिजक आया, रोजी आई है, बस उसका मन देते असर पैना बड़ा लाजमी है। रिजक आया जोर जबर नाल, रिजक आया अनर्थ बरे थां तो, रिजक आया वास्तविक जो मुर्दार है अपना हक ही नहीं, तो उसके नाल मन की बनतर ते वैसे बनेगी, क्योंकि रिजक नाल रोजी नाल ही खून बनेगा, ते खून ही शरीर दे चलेगा, जीवन बनेगा, मानसिक शक्ति बनेगा। इस वास्ते आम कहावत प्रचलित हो गई, जैसा अन्न तैसा मन। अन्न शुद्ध नहीं तो मन का शुद्ध होना बड़ा औखा। साहिबकंद ने छुरी वगा के जो अपना स्वार्थ साधदे ने उन्हां दे घर ब्राह्मण जाके शंख पूरदा है, उन्हां तो दान लैंदा है, अपनी उपजीविका चलांदा है। इस वास्ते ब्राह्मण नूं भी उही रस आ जांदा है, उही स्वाद आउंदा है जिहड़ा छुरी जो है वगाण वालियां नूं आउंदा है। उन्हां दे आवे उही साथ। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार। महाराज कहिंदे मैनूं तां ऐसा दिखाई दे रहा है सारी मूड़ी ही कूड़ दी है, ये धर्म दा सारा व्यापार ही कूड़ ते खड़ा है, जबकि धर्म सच है, परमात्मा सच है। कि जब इतना कूड़ है कि उन्हूं धर्म कहना भी अन्याय है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने कि सारी मूड़ी कूड़ दी है, सारा धंधा व्यापार कूड़ा है, और कूड़ बोल करे आहार, अपना रिजक चलांदा है, अपने आहार की पूर्ति करता है कूड़ बोल बोल के, झूठ बोल बोल के। रोजी मिल रही है अगर झूठ बोल के, तो इस रिजक ने अंतिकरण दे झूठ नु वधाना है। लफ्ज फिर दोहरा दईए, जैसा अन्न तैसा मन। अगर रोजी झूठ से खड़ी है, कूड़ से खड़ी है, धोखे से खड़ी है, फरेब से खड़ी है, तो उस रिजक करके मन की हालत वैसी ही बन जाएगी। तो साहिब कहिंदे ने कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। पातशाह कहिंदे ने धर्म ते शर्म एदा ते डेरा, एदा ते अस्थान मानो मनुखी जिंदगी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। धर्म की कोई नेड़ता नहीं, शर्म की कोई नेड़ता नहीं, अगर नेड़ता है तो कूड़ दी, कूड़ दे आसरे ते अपना रिजक चल रहा है, रोजी चल रही है, कूड़ दे आसरे ते धार्मिक कर्म चल रहे हैं, कूड़ दे आसरे ते सारा व्यवहार चल रहा है, सारी जिंदगी जो है चल रही है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने मैं तो इंज देखदा पिया, नानक कूड़ रहा भरपूर। जीवन दे हर पख विच झूठ भरपूर है, ते जीवन दे आखिर बुनियादी पख ते यही है, व्यवहारक, आर्थिक, समाजिक ते राजनीतिक। साहिब कहिंदे जीवन दे हर पख विच कूड़ भरपूर है, कूड़ व्यापक है, कूड़ दे आसरे ते रिजक चल रहे हैं, कूड़ दे आसरे ते धार्मिक कर्म खड़े ने, और कूड़ ते आसरे ते सता खड़ी है। मत्थे टिक्का तेल धोती कखाई, उंज धार्मिक चिन्ह सारे धारण किते ने, मत्थे ते तिलक है, तेल धोती पहनी हुई है, कखाई कखां दी माला गल दे जो है पहनी हुई है, पर हाथ छोरी ही जगत कसाई, हाथ दे के छुरा है। और किसी बकरी का एक कसाई नहीं, बकरी नू नहीं कोंदा, किसी गऊ का जबा करने वास्ते एक कसाई नहीं बनया, एक किसे मुर्गे नू नहीं कटना चाहता, जगत कसाई है, तो जगत कसाई है, जगत नू ही बढ़ना चाहता है, जगत नू ही धोखा देना चाहता है, जगत का ही गल वढ़ना चाहता है, इन्ना वड्डा कसाई। झूठ का छुरा कोल है, कोई भी इसकी लपेट दे चावे, ये गर्दन कटन नू तैयार है, भाव झूठ का व्यवहार ये सारिया नाल करी जांदा है, اور ہاتھ وچ اسی چھوٹ دی چھری نال ہر ایک نو ذبح کری جاندا ہے، ہر ایک نو جو ہے کوئی جاندا ہے۔ نیل وستر پہر ہووے پروان، ملیش دھان لے پوجے پران۔
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਝੂਠ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕੂੜ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕੂੜ ਤੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਤਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਉਂਝ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਹੈ, ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਖਾਈ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਹੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਹੱਥ ਦੇ ਤੇ ਛੁਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਊ ਦਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਗਤ ਕਸਾਈਏ ਤੇ ਜਗਤ ਕਸਾਈਏ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਗਲ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸਾਈ। ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇਹ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਝੂਠ ਦੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੇ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤਰ ਨੀਲੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਲੇਸ਼ਾ ਦਾ ਧਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਜਦਾ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਜਾ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਭਾਕਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚੌਕਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਭਾਕਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਇਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰਜ਼ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੌਕੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਚੌਕਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਚੌਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਕੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ, ਇਹ ਜੋ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ते जे कूड़ चौके विच बैठा है तो चौका सुच्चा नहीं है, चौका अपवित्र है। मत भेटे वे मत भेटे एह अन असाडा फिटे, पर तू कहना मतां किधरे मेरा अन भेट ना जाए, कोई मेरे चौके विच ना आवे, मेरा भोजन भ्रष्ट ना हो जाए। पर साहिब कहने तू अंदर गया और तेरे हृदय च कूड़ है, ते जे चौके विच कूड़ चला गया झूठ चला गया तो चौका सुच्चा किस तरह होया, चौका पावन किस तरह होया। तन फिटे फेड़ करें मन झूठे चुली भरेन, तन अपवित्र है मलीन है ये भोजन छकदा है, ते झूठा मन है ये चुलियां पिया भरदा है, चुली पिया करदा है, भाव हाथ मुंह साफ पिया करदा है। साहिब कंदन कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए, सुच ते तां आउंदी है जे सच दी प्राप्ति होवे, ते सच दी प्राप्ति तां आउंदी है जे सच विच ध्यान जोड़िए। कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। नाल जो पौड़ी है 16वीं उहदे सतगुरु देव जी महाराज फरमान करदे ने कि ओ जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, मता किधरे तेरे अंदर ख्याल पैदा हो जाए कि इतना वड्डा उसने पसारा पसारे है, इन्ने ब्रह्मंड इन्ने सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्र इतने पशी ते पक्षी और सागर दरिया पहाड़, कुछ एक नूं भुल गया होवेगा, कुछ उसके चेते विचों निकल गए होणगे। महाराज कहिंदे ऐसी गल नहीं है, चिते अंदर सब को उदे चेते विच सब कुछ है। ऐसा नहीं कि वह किसी नूं भुल गया है, एक कीड़ी भी उसके चेते च है, एक हाथी भी उसके चेते च है, रेत का एक जर्रा भी उसके चेते च है और सूरज भी उसके चेते विच है, एक पत्ता भी उसके चेते विच है, एक पहाड़ भी उसके चेते च है, एक कीड़ी भी उसके चेते च है, एक मनुख भी उसके चेते च है, तू उसकी याद विच है, सब कुछ उसके चेते विच है। इतों ही पता चलता है कि उस परमात्मा का चेता कितना महान है, उसकी चेते शक्ति कितनी अजीम है। पर महाराज कहने मेरा ए ही नहीं कि सब कुछ उसके चेते विच है, बल्कि सब कुछ उसकी निगाह दे हेठ, उसकी निगाह दे थले, चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएगा, सब कुछ नू अपने निगाह दे हेठ रखता है और सारा ब्रह्मंड चल रहा है उसकी निगाह दे हेठ, सारा ब्रह्मंड कार्य कर रहा है, सब कुछ उसके चेते दे, बोलिया कुछ नहीं। किसी भी मनुख नू अपने घर का सारा साजो समान चेते च नहीं होगा, कुछ ऐसा होता है जो चेते च निकल जाता है, निक्का जिहा घर थोड़ा जिहा साजो समान, लेकिन सब कुछ चेते दे च नहीं। इन्ने महान ब्रह्मंड और किन्ने कने इहदी गिणती भी नहीं, मनुख दे कोल आंकड़े ही नहीं कि आंक सके, संख्या कर सके, गिण सके। पर सब कुछ उसके चेते दे, चाहे सूक्ष्म है चाहे अस्थूल है, चाहे तुच्छ है चाहे महान है, चाहे कमजोर है चाहे शक्तिशाली है, सब कुछ उसके चेते दे, चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे देवड़ियाइया आपे ही कर्म कराएंदा। ऐसा बख्शिंद परिपूर्ण परमात्मा है, वो आप ही बख्शिश करके वड़ियाइया दे देंदा है, वड़ियाई कई पक्ष दे कई पहलुआं दी और तरह तरह दे कर्म दी प्रेरणा आप को दे रहे है। सारियां च बैठ के वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा, वड़िया तो वड्डा है, महान वड्डा है, सारी सृष्टि दे रचन वाला है ते मालिक है, हर एक नूं अपने अपने धंदे ते लाया, सिरे सिर धंदे लाएंदा, तुद संसार उपाया सिरे सिर धंदे लाया। वंड दिते ने धंदे उस परिपूर्ण परमात्मा ने, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ, ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ, ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ, ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ, ਥਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ, ਨਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ।

फिर फिर आई है दुनिया को तीरास पूर कमाई है नानक सच खरा सला है पट स्यो जाइए नानक सच खरा सला।

सनातन पटित पावन हरि नाम जियो पटित पावन हरि नाम जियो पटित पावन हरि नाम जियो।

मस्तक तुर लिख पाए जियो। हर नाम पदारत कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, हर जपिए सतगुर।

अपने चलता करने हर लाख इस कौन मार जिस हर लाख इस कौन मार हर लाख चढ़ाई दियो अन्न नाम लड़ी

0: हर सुख पावे हर जगावे जब हर सुख पावे गुर प्रसादी हर रस आवे
1: हर हर पार लंगाई दियो जब हर हर पार

रोमांच एक आराधने इनकी बरकत खाए सबसे आएगी ये खाए पाए जो साहेब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैर ले जे मुए मर जमे कोड़े जो बिन सतगुर

कोई जावे को सुने हर नामा चित लाए, कहे कबीर संसार नहीं अंत धर्म गत पाए। लोग कहे लोग जाने ए गीत है, लोग जाने ए गीत है, ए तो ब्रह्म विचार। जो कंठी उपदेश होए मानस मरती बार, कोई जावे को सुने, कोई जावे को सुने।

सामने आई। ऐसी भक्त बाने आई हम हर दिन खिल पल रह ना सकूं, जैसे चल दिन नींद मर जाए। ऐसी भक्त बने आई वर पाया प्रभ अंतर जामी, नाच सुहाग ना करे आई।

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाद बिखै बिखाही। माया मोह परम पै भूले, सुतदा राशों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविय, अहनस सहज सुपाय। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। हो वै शिव दुख संबंधी, नूर अरसों पुरसों चटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म भी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह दशाह।

जे को मन जाने मन कोय, मन मार्ग ठाक न पाए, मन बतसम प्रगट जाए, मन मग्न चल पंथ, मन धर्म सिद्धि सन बंध, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय।

निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावन दुर्ग मान पंचे सुह दर जान पंचा का गुर हिक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करना नाई सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जन सूत जे को बुझै है हो वै सच्यार तबले उपर किता पार धरती होर परे होर होर दिसते पार तलै गवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखा बुढ़ी कलाम यह लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखा किता होय केता दान सवाल रूप केती दात जाने कौन कूद किता बसा हुई को गवाऊ दिसते हुए लख दरियाऊ कुदरत कवन का विचार वारा न जावा एक बार जो तुद पावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप संघ पाओ संघ पूजा संघ तपताओ संघ ग्रंथ मुख वेद पाठ संघ जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार संघ सती संघ दातार संघ सूर मोह बखसार संघ मोहन लिव लाई तार कुदरत कवन काम विचार वारे न जावा एक बार जो तुद पावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर राम घोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलबड त्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख गाहे असंख निंदक सिर करहि पार नानक नीच कायम विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावै साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर राम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलबड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख गाहे असंख निंदक सिर करहि पार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाभ संघ थाव गम गम संघ लो संघ कहे हैं सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सर संजोग खाण जिने लिखे तैस सिर नाहे जय फरमाए दिव दबाए जेता किता तेता नाओ बण नावे नाही को थाओ कुदरत कवण का विचार वारे न जावा एक बार जो तुद पावै साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार परिया हाथ पैर तन देहि पानी धोतै उदर सुखे मूह तबलीती कपड़ होए दे साबुन लई आव धोए परिया मत बापा कै संग धोपै न वै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे गर गर करना लिख लै जा आपे भी जापे ही खा नानक हुक्मी आव जा तीरथ दप दया दत दान जे को पावै दिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मै नाही कोई बिन गुण कीते भगत न होए सुवास आत्मबाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुबेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति महा कवन जित आकार वेल न पाई पंडती जे वाले पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण ले कुरान थित वार न

काल श्लोक पवन गुरु पाणि पिता माता धरत महात दिव सरा दुदाई दाया खिल सगल जागत जंगियाइया बुरियाइया वाच धर्म दूर करमी अपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्हें नाम ते आया गए मशकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।

दानव देव नंदन साचर भूत भयख भगवान जपेंगे जीव जते जल मैं थल मैं बल ही बल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत दो पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सदर सब अब लोग जपेंगे मान बेंद्र के चंद्र निरात बजंतर लोग को राज करेंगे कोट स्नान के जात के दान अनेक सो अम्बर राय भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सरिपद अंधम बात भरेंगे जे नार सरिपद के परसें पाग दे नर फिर न दे तरेंगे कहाँ भव जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो न हाथ फिर फिर लिये सात समुद्र न लोग गए पर लोग आयो बास के भगवान पर बैठ के ऐसे ही ऐसे सब बैठ जाए साच कहो सुन रहे हो सब जिन प्रेम की हो तिन ही ब्रह पायो काहू ले पाहन पूज तर सर काहू ले लिंग कर लटकायो काहू लखे अरवा चीज सामे काहू सा कुछ सुनवायो

कभी बाज बेनती चौ पई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब जरनन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम काब हो आप हाथ दे मोह बचाव हो सुखी बस मोर परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करे सब वैरन कव आज सिंघरे पूर्ण होए हमारी आसा दूर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर जाऊं।

राज ब्रह्मा जू थी ओ जमन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ना हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दयांत जशन बजायो आदि अंत कह अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी शिव कण को शिव गुण सब दियो सतरन को बल मोहबल कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते गुंजर असूला सब कर कृपा दृट कर फूला संतन दुख बाहे ते दुखी सुख बाहे साधन के सुखी एक की पीर पछाने गड़गड़ के पट पट की जाने जाबुद करख करा करतार प्रजा दर्द दे अपार जाबया करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेठ सब धारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील नाद संभ ताका मूढ़ चारत बेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कह सदा सेव निरंकार का जीण तन पैव आप अपनी बुद्ध जेती वर्णत भैन भैन देती तुमरा लखन जाय पसारा के बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनुप स्वरूप रंग भयो रंग वैभूप पांड जिरज असित गिनी अदपान बहोर रज दिनी कहूं फूल राजा व बैठा कहूं सिमट भयो शंकर गठा सगरी चंप आज गास रूप से अंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग्रो दोटी दे उठ बद पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तो जे तब सरणी भरे तनके दोष दम तारा मरे बुरख अनुभव भरे तिहारे तनके दम संकट सब डारे जो कल कोई कुआर जाए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए दाई सब काल दुष्ट रिष्ट डर तद काल कृपा दृष्ट धनिया निहारे हो ताके ताप तन कम हरे हो हरद सद कर्म सब होई दुष्ट शास वसकन कोई एक बार जंत मैं संभार काल पास दे दाय उबारा जेन नर नाम तिहारु कहा दार्द दुष्ट दोग दे रहा खड़ गए तुम शरण तिहारी आभा दिल उबारी सर ठारा हो साई दुष्ट दोग दिल बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आवारी सर्वठारम हो सहाई दुष्ट दुख दिल बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दल उबारी सर्वठारम हो सहाई दुष्ट दुख दिल बचाई राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइयां शब्द दंगा बोहरी केरा मन जिनी बसा

पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है साथ पड़िया जेते।

0: होए ताव गवर्ती हो रत होए नानक पाहे बारा कोरे रंगना सोए पैर छुम चढ़ाइया सरों पावतन होए नानक भक्ति जेर पै कुड़ा सोए ना कोए महला फैला
1: सब पाप दोहरा जा महता कूड़ा।

नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ जुग जुग फिर बताइया जानी बुझाता सात जुग रथ संतोष का धर्म गर्थ वाओ त्रेता रथता का जोर गर्थ वाओ द्वापर रथ तपै का सत गर्थ वाओ काल जुग रथ अरण का

0: भारत राज्य तो लेने में सौ रागो अपराधी दुनाने में जो अंता मृगाय जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादल पूज सुबगल सुवादल मुख।

0: पवन गुरु पाणी पिता माता धरतमत दिवस रात दो सकल जागत चंगियाईया बुरियाईया वा चतुर महदूर करवी आपो अपनी
1: नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजड़े खेती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
2: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
3: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
5: Gauri Sukhmani Mahalla Panyama Salok Ikku Vankar Sadgur Prasad Adgur E Namai Jugadgur E Namai सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरौ जास दसम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गली ना आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला से सिमरै जिने आप सिमराए नानक तां कै लागो उपाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से धनवंत प्रभ को सिमरै से पतवंत प्रभ को सिमरै से जन परवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੋਹ ਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ।

प्रभु कौ सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरै तिन सुख बिहावै, प्रभु कौ सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु कौ सिमरै

नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी, प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार, सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन का भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महापयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल हो वै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तर, हर को नाम कोट पाप पर हर, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तर, अनक माया रंग तिख ना बुझावे, हर का नाम जपत आगावे, जे मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग हो तो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही, अनक बिगन जाए आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार, अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कबो न तोवै, हर का नाम कोट पाप होवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग, जेह मार्ग ते गने जाए ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा,

तै नानक हर हर अमृत बरखै, संत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नौदान, मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बिबेकै, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जबत कौ परै ना भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जबत कछ नाहे बेयोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजा।

गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम रहै सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए हम मैं शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगर पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सिरिष्ठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन कौतम तेरो नाओ, निथावे कौ नाओ तेरा थाओ। निमाने कौ प्रभ तेरो मानो, सगल कटा कौ देवो दान। करण करावन

आवत जावत जन्म मरै, जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिर प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा। उपाव सियानप सगलते रहत, सब कह जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध यार लोभ मोह, बिनस जाए हम एव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस सागर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस कौ सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन योग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लोभावै। जे प्रसाद सुख से सुईजै, मन आठ पहर ताका जस गावीजै। जे प्रसाद तुझ सब को मन, मुखता को जस रसन बखाना। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा ते आए।

जे प्रसाद कर पुन बहुदान मन आष्टहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो उसका अनूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरप्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुनै करन नाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद। जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फलै। जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ गुरप्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी मया आपो कछु ना किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनकै कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उजल होत साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी। साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेण साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूँ तावै साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग ना बींगा पैर। साध कै संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग ना ही हौ ताप साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहूँ तावै साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसा गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग मैल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है। साधु कै संग सो तन पावै जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल। साध कै संग कलुख तहर है साध कै संग नरक पर हर है।
साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध निज बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै पर मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचे ऊंची, साध की शोभा मूचे मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुना, नारक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे महल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे

केवल भगत कीर्तन संग राचा है। मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरै नाम जपावै नानक हो बैसनो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कहो पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम या तुम मैं सोधै। राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन ना आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सूखम मैं जानै असूल। चहु वरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहु वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए सत्संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उतारै पस प्रेत मुग्ध पाथर कौ तारै। सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जूत कतै ना पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया दास बसंतन पाए तन पाया। सदा निगट निगट हर जान सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो

तैसा हरख तैसा उस सोग उसका आनंद तै नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत नानको पुरख कही है जीवन मुगत। पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रख है तैसा तिन नाओ। आपे करन करावन जोग प्रभाव है सोई फुन होग। पसरो आप हुए अंत तरंग लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रवरची बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब काव विचार है। कई कोट नवतन नाम से आवे नानक करते का अंत ना पावे। कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपेदे आत्म निकोर। कई कोट पर दर्ब कौ हिरै कई कोट पर दुख ना करै। कई कोट माया श्रम माहे कई कोट पर देश पर माहे। जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससियर सूर नखियतर कई कोट देवदानव इंद्र सिर छतर। सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र। कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण सीवे। कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। सब ते नेरै सबहू ते दूर नानक आप अलिप्त रहया परपूर। कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट बौजोनी फिरै। कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घालै थक पाहे। कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मै चिंत। जह जह पाणा तह तह राखे नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी राम नाम संतिन लवलागी। कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मै पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभु विनाश। कई कोट मांग ऐसा संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनका होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड। कई कोट होए अवतार कई जूत कीनो विस्तार। कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते होए प्रमाह समात। ताका अंतना जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत् के बेटे सदा निहारा एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवै
अमर पहे सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहज समावै, अपने जन को सास सास समारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहार।

कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मौन धारी लावे ध्यान, कभू तब तीर्थ स्नान, कभू सिख साधक मो ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, ज्यो प्रभ पावे तिवै नचावे, ज्योत पावे सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संगते हो पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मानता नाम रते करंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राजा महान, सो नरक पाती होवत समान, जो जन मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत।

आए आप उपदेश है समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप तीनों अपन विस्तार सब कश उसका ओह करने हार उससे पिन कहो किस होए था।

संत के दुखी की जड़ किछ ना है, आपन बीजा पे ही खाहे। संत के दुखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावै ता ले उबार। संत का दुखी ओ बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यो पाप की ईंधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंद का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी तो दरगह मिलै सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दुख ना तृष्टा कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया कीर्तना मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करण हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उसत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास। सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोठिया। अपना खेल आप करण हार, दूसर कौन कह विचार। जिसनों कृपा करै तिसे अपन नाम दे।

एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानु की टेक बिरथी सब जानो।

आप मानो कह किस नाही हाथ, तिसका हुक्म भूस खोए, तिसका नामरा कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, उसका सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग।

जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब दे ऊच निर्मले करनी, कर कृपा जिस कौ नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जा कै मन गुर की प्रतीत, ते जन आवै हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जा कै हृदय को होए, सच करनी सहिता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वरत साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाप्त।

जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख, मानव की तू प्रीत त्याग, तिससे परे नाही किस कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहिर सो जाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बसंद। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कह मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने होर। आनंद रूप मंगल सदजा कै, सर्व थोक सुनिए करता कै। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी। त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किरंत ना पाया। जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जन।

जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जा के रंग, नाना पे करै करंग, नाना बिदकीनो बिस्तार, प्रभ नासी एकंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए, नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे स्मृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समय समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बजाय तिसै सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दै प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपत ता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मितगत, जिसकी सृष्ट सो करना हार, अवरना बुझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस पावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राजन रहे, गुर के बजन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख काट नहार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत अवनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जसुनता, बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया।

अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का नाहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेव कौ दे, मोह माया के संग ना लेप, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख ते नासे, तप्त माए ठंड वरताई, अंध भया दुख नाटे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौ चूका निरपा होए बसे, सगल ब्याद मन देखे नसे, जिसका सा तिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, खित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस रवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरत प्रव्या बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। श्लोक।

अष्टपदी। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवरो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद में उतारो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर दहो नाम हरवथ। एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस तन को चार कुंट उठतावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाछ मीत, सो सुख साधु।

रोग मिटे हर अब खदलाए, सर्ब निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोध

हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत पाया तुम परगास। चित कर जाए बस अबनासी, कहो नानक काटी जम फांसी। तत विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा।

0: अनक्यो पावना छूट नहारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अर बनता इनते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कमन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत
1: Thank you.

0: पौड़ी।
1: चाकर लगे चाकरी जे चल खसम पाए, हुरमत दिसनो अगली वजह कोई दूना खाए। खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए, वजो गवाए अगला मुंह पाना खाए। जिसका दिता खावना किस कही शाबाश, नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास।
0: जिन अंतर

हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे

परम सन्मान योग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा सदका सतसंगत करन दा सुभागा समा आप सारिआं नूं प्राप्त होया। हफ्तावारी समागम दे अंदर हाजरियां भरन दा अमृतमई बाणी सरवण करन दा सुभागा समा मिलिआ। जिथे असी अज हफ्तावारी समागम मना रहे हैं उथे नाल ही भादरों का महीना शुरू होया। भादों की संगरांद है, थोड़ी कटाओ। अज के दिन भादों का महीना शुरू हो रहा है ते असी सतगुरु पातशाह महाराज जी के चरणों में नमस्कार करके गल विच पल्ला पा के एक अरदास करनी है, एक बेनती करनी है। महाराज साढ़े ते कृपा करके दसो असी भादों के महीने किवें बतीत करिए, भादों का महीना साढ़े वास्ते किवें सौखा होएगा, क्योंकि असी रोज़ आने गुरु को खुशियां मंगन वास्ते आने। खुशियां किवें मिलनगियां, इस तप के महीने में साडा जीवन सुखी किवें रहेगा। सतगुरु सानू प्रेम दे विच आ के समझाउंदे आ, की समझा

वाजे पंच शब्द कर सुभागय कर सुभागय शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते।

कहो नानक सब तेरी बड़ियाई कोई नाउ न जाने। वाहिगुरु जी एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जय जेठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर आए घर नौ निदावे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियों की आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान रखे। खालसा जी साहब बोलो जी वाहिगुरू जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वन छकिया देवी चलाई तेग वाही देख क्या नटकी तदना प्यारा सचारियां दी पवित्र कमाई का ध्यान रखे। बोलो जी वाहिगुरू। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े दाना रहे नाल चरवाए गए गुरुद्वारा की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासा संग निभाई तिन्हां प्यारां सत्यारां दी पवित्र कमाई का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरू। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारा का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरू। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। जतावे जतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा देख ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दान असर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन जनान। चौंकियां झंडे पुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा मातु जी मत कर रखा वाहिगुरू। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जी। श्री ननकाणा साहिब गुरु गुरुद्वारा गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे रवाणा दे माण नचाणा दे ताण दे ओटां दी ओट सच्चे पिता धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर सोहणे पावन चरणां विच अरदास बेनती है। महान कृपा होई महान कृपा सदका पिछला समा आप जी के हुक्म अंदर सुख का वजीर लंघिया होया सच्चे पातशाह जी। हफ्ता वरी समागम के अंदर आप जी के पावन दरबार में हाजरियां भरिया गई। अमृत वेले तो लैके आस्था की वार कीर्तन के नाल दीवाना की आरंभता हुई। गुरबाणी का कीर्तन सच्चे पातशाह जी संगतां ने रल मिल के किया। भाद दोवें भरम भुलाणियां दूजा लगा हे दे मावाक अनुसार भादों की आरंभता हुई है पातशाह जी। भादों के महीने की आरंभता मनाद्या होया संगतां ने आप जी के चरणों में हाजरी भरी है। कृपा करनी भादों के महीने में सरबत संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना नाम दीआं दातां बख्शिश करनियां किरत करन दा नाम जपण दा वंड के छकण दा बल बख्शिश करना परिवारां विच आपसी प्यार दी दात बख्शिश करनी बाणी बाणी दी दात बख्शिश करनी अमृत वेले दी दात बख्श के अपने चरणां दे नाल जोड़ के रखना जी। उह सभनां दे मन नूं शुभ भाव अपने चरणां दे नाल जोड़ के रखना बाणी दा रस बख्शिश करना आने वाला समाज जी के हुक्म अंदर सुख का बतीत करना जी। आप जी के दर घर के प्रीतवान भाई इंद्रपाल सिंह जी के परिवार को चढ़ती कला नाम दातां बख्शिश करनी है जी। भाई रजेंद्र सिंह जी के परिवार को चढ़ती कला नाम दातां बख्श के अपने चरणों के नाल जुड़ के रखना भाई गुरभीम सिंह जी के परिवार को चढ़ती कला की दात बख्शिश करनी बच्चे के सिर पर मेहर भरिया हाथ रख के उच्चा सुचा जीवन बख्शिश करना मापियां का आग्ञाकारी बनाना जी। तंदुरुस्ती बख्शनी सारे परिवार में प्यार स्वागत की दात बख्शिश करनी वाहिगुरू जी। रवि जी और रौचिका सत्यदेवा के परिवार को चढ़ती कला की दात बख्शी अपने चरणों के नाल जुड़ के रखना जी। सेवा सिमरन की दात बख्शिश करनी संगतां की भेटा प्रवान करके लेखे में हाजिरी लाउणी आप जी दख्शिया दातों के तिहावल कड़ा प्रसाद देख सज के हाजिरा दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद कारी संगत में वरते जो जी छके आप जी का पावन पवित्र नाम जपे संगतां वलों कीर्तन की सत्कार वास्ते माया भेट की गई कृपा करनी सफली करनी जी। आने वाला समा सुख का बतीत करना सही प्यारे मेल कराने जिन्हें मिलया पवित्र नाम चेता वै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। दोहरा गया पई अकाल की तवे चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभु कोमल वोच है खोज राज करेगा खालसा या की रहना मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है जो श्रद्धा कर सेवंदे बोले
ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

फिर संग भावै सहजन आवै बेणी दा संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़ै सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय के वड्याखी है हौ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा कूच करहे आवै बिखला दे शब्द सच है गुर मेरा आखण तोट न भगत भंडारी

दोनों सिंह बैरिया की नजर तो बच के अमृतसर के नेड़े पहुंचे। मत्ते रंगर तक पहुंचने की स्कीम कर ली। एक पुरानी खेतों ठीकरियां इकट्ठिया कर एक बोरी विच भर लिया। अपने केस पिछे सुट चौधरी जटा वाला भेस बना लिया। तलवार चोरिया ने हिर लुका लिया। हरिमंदर साहब वाल तुर पे। दोनों शेर दर्शनी ज्योरी जा पुजे। बूहे के सज्जे हाथ लगती बेरी नाल सिंघा ने घोड़े बन ले। भाई सुखा सिंह ने बोरी मोढ़िया दे चुक लिया। पहरेदारा ने सोचा कि किसी पिंड के नंबरदार मामला उतारने वास्ते आए होंगे, सो किसी ने भी उन्होंने रोकिया नहीं। भादो की दुपहर होने करके उस वक्त जोर की नेरी वग रही थी। सिंघा ने अंदर लंघ मन ही मन अरदासा किया, हे सच्चे पातशाह तेरे सिंघा का वार खाली न जावे। की वेखते हैं कि हम घर ही मत्था पलंग से बैठ बैठा हुक्का पी रहा है, नाती पई है। सुखा सिंह ने अंदर लंघते ही बोरी पलंग के थले सुट दिता। जो ही मत्ते ने बोरी देखने वास्ते अपना सिर हेठा चुकाया तो भाई महताब सिंह ने तलवार के एक वार ना ही मत्ते रंग का सिर वगा के है।

गुरु प्यारिता सिंह जी, अकाल अकेडमी गुरुद्वारा बरू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दिया बीबिया के ढाडी जथे की इनी सेवा प्रवान करो। बुलाओ पते ते आखो गज के वाहे गुरु जी का।

0: का हर जस बुलते मांगना जागना जागनी का हर कीर्तन में जागना तो किछ काल जित मैल न लागे
1: क्योंकि तेन पता हुए जिते शरद रुत रूपी प्रभु नु घर लियाउन लई प्रेम उमा दी लोड़ है उत्थे कर्मां दे सुधार दी भी लोड़ है कर्मां ने भी नेड़े लियाउना है ते जदों किसे बिपता विच फस जांदा है जदों कोई तकलीफ आउंदी है कर्म दे करके ही तू दुख पैदा करने कर्म करके ही सुख पैदा करने नहीं असीं जिहड़े पिछले दिनों विच अर्ज कीती सी जिहड़े असीं कहिंदे आ ना मत्थे दे लेख नाल ही दुख सुख आउंदा मैं अर्ज कीती सी इह ठीक है कि रब लिखदा है उनदे लेख नाल ही दुख सुख आउंदा पर इक ख्याल करी उह लिखदा तेरे कर्मां दी फाइल नूं देख के फिर दोबारा दोहरा दिया जो कुछ वो लिखता है ना वो तेरे कर्मों की फाइल देख के लिखता है। हमने श्री आसाई दीवार दी पौड़ी सुन रहे सो

होगा लखोजी ने इनके कई रूप ने। जे मनुख अपने जीवन अंदर अपने आप की परख पड़चोल ही ना करे तो आखे जो कुछ मैं कर रहा बिल्कुल ठीक है ये भी हो। कई बार गुरमुख की दुनिया में भी ऐसे वीर मिलते हैं जिहड़े आखदे ने सारे गलत, जो फैसला गुरमत प्रति मेरा है ना बस एहो ही सब कुछ है। आ जिहड़ा मेरा फैसले का मसला है ना इत्थे ही होमे खड़ी हो गई। गुरु ने आख्या जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं करे। जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्म जोड़ कर उस मैं उस हों जिन्हें मेरे से मेरे सर्दी की रुत वर्गे परमात्मा में दूरी पैदा कर दी थी वह तो दरमियान हटानी थी। हों हों मैं बिचों खो गए, हों हों मैं बिचों खो गए, दूजा मेटे एको हो गए। उस सर्दी की रुत वर्गे परमात्मा नू अपने नेड़े लियाना है, जे घर हिरदे दे वेड़े विच लियाना है तो बहुत जरूरी है कि तेरे दरमियान तेरे दिमाग विचों ये गल भी निकल जानी चाहिए है कि जो कुछ कोई दुख आया वो मेरे रब ने दिता। रब कभी किसी नू दुख नहीं दिता, बल्कि कह लगे जे तेरे मन अंदर उनके नाल प्यार का कोई रिश्ता है तो कभी प्यारे नू ए दोष नहीं लाईदा तू मैनू दुखी किया है। जेड़ा तेन दुखी करता तेरा प्यारा कदा हो जिंदे ते तेन ये शक है कि वो मेरे लिए दुख पैदा कर सकना है उसे दुश्मन है वो मित्र किवें हो सकता है। दुश्मन तो ये शक होंगे उसके को खतरा होंगे कि मेरे लिए कोई परेशानी ना खड़ी करे तो जे तू मन अंदर यह सोच रहा है कि मेरे लिए दुख ये उनकी मर्जी नाल आया मेरे को जदों मनुख अत दुखी हो तो कोई बस न चले उदों सारा दोष रब से मर दिंदा है तो आखो चलो आख दी चलो उनके पाड़ में गलती किसी यह लफज कह ना उनके पाने में है तो उन्होंने दोषी खड़ा भाने का अर्थ होंगे चंगा लगना। इनका मतलब रब के भाने रब न यो चंगा लगता मैनू दुखी करना है। इस गल का जवाब मैं अर्थी की श्री गुरु साहब की बाणी देता है कहने ने भलिया एक ख्याल करी सो सिख सखा बंधप है भाई जो गुर के भाने में आवे अपने भाने जो चले पाई भी छो। जिन्हिया चोटा खाने जिन्ने दुख पैदा होंगे ने सारे तेरे अपने भाने करके तू वो कुछ कर रहे हैं जो तेन चंगा लगता है जो तेन पाते। गुरु कहते हैं इस गल को तेन मैं चेतन करना चाहना तेन पता हो अगला मेरे रब नाल रिश्ता पाने का जोड़ा उपराला है वो ये है कि तेन ख्याल होगा

कर्म प्रति चेतन हो। जो जो कर्म करेगा ओह जी नेड़ता या दूरी पैदा होगी, ओह जो आयुगाना भुगतना पा, फिर किसी को दोषी ना ठहराई। तेन यह पता हो कि जे तू अपने कर्मा विच प्रभु का मिलाप चाहना है ओनू भुली ना। जिस दिन ओनू भुल गया उदो रोग आ जाएंगे, फिर जो रोग आ गए फिर आखिर ना।

फिर मैं गल दोबारा दोहरा दिया, किसी का किता किसी का तेरे लिए की हुई मदद भी मदद नहीं बननी, बल्कि इतने एक गल फिर दोहरा दिया, असीं किसे दे जान तो बाद जिहड़ा सोचने आ ना, आ दान किया होया आ पुन किया होया उन्दे तक पहुंच जाएगा, असीं उन्दी मदद कर रहे हैं क्योंकि उन्दे लिए बिस्तरा प्रदान कर रहे हैं, मत उन्दे कोल सौण लई उत्थे बिस्तरा ना होवे, हाँ कपड़े पहचान करने हैं मत उनके पहले कपड़े फट जान से उनके कोल होर जोड़ा कोई ना, असि सारिया चीजा एक ब्राह्मणिज्म वालों अपने जीवन में उसके पैन नहीं आने हैं, मंजे भी क्योंकि शरीर करके जीवन में लोड़ सी मत दरगाह में उनके कोल मंजा ना होवे, उन्हें जमीन पे ही ना सोना पै जाए, एक मंजा भी दान करो, एक जोड़ा भी दान करो, कपड़े भी दान करो, बिस्तरा भी दान करो, जिन्हें सब कुछ असि उत्थे पहुंचा रहे होंगे उनके वास्ते, इसे ना ही पादू धर्म कर रहे हैं परम विच, इसे ना जीवन का पादू है, गुरु कह लगे हो भलिया कीता किसी ना हो गई, हां जेड़े तू अपने कर्मा तो लेख बना लै ने संजोगां दे मिलाप दे फायदा उन्हां दा ही होना, लिखिया तुर संजोग उस कर्म तो पैदा हुए संजोग की निशानी की होगी, कि उस संजोग रूपी कर्म लिखे किवें गए, इनका भेद किवें पावा, अगली लाइन में जवाब देने लगे, कह लगे जे तेरे मत्थे दे तेरे कर्म तो पैदा हुए हुए तेरिया चंगियाइया ते नेकियां करके वाचे हुए कर्म तो तेनू प्रभु दे मिलाप दा संजोग लिखिया होवे ना, ते फिर ए गल समझ लेंगे। वड भागी

खिन में हुए गया है खाका, मंदा चितवत पचया जिन रचया तिन दीना ताक, पुत्र मी

0: पुत्र मीत धन किशु न रहे हो, सो छोड़ गया सब भाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूरन वाक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा।

0: का।
1: हाँ जी, इतिहासक कुछ ना आ जान, जिमें के जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में लालो। लालो दा नाम आ गया, हुण लभना पएगा लालो किथे दे रहण वाला सी। सैदपुर दे रहण वाला सी। आमने 78 जान 97 हुण समत भी आ गए। और भी उठती मर्द का चेला, थामा दे नाम ही आ गए। गोविंदवाल गोविंदपुरे सम जल्यन तीर बिपास बनायो। कुछ व्यक्तियां दा हुण भी जिक्र आ गया, जिमें के जिक्र आया तपना होवे अंदरों लोभी नित माया नू फिरे जज मालिया। अगों दे सदिया सते दी पिछिया लै नहीं, पिछों दे पछताए कह तपे पुत विच आन बहालिया। ये तपा किथे दा सी, ये गोविंदवाल दा सी। ये हुण कुछ नाम आ गया हो रहा है, जिमें मेरा सतगुर रखवाला हुआ, तार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया, हर गोविंद नवा नरोवा। लेपना लागो मित्तल का मोल, दुष्ट ब्राह्मण मोआ होए कैसो। ये इतिहास पात्र ने कुछ ऐसे ने जिन्ना दे नाम आ गए, कुछ ऐसे ने नाम नहीं आए, फिर भी ये कहना पड़ेगा। बेशक इतिहास घटना वाले इशारा है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहब इतिहास का ग्रंथ नहीं। ये अकाल पुरख की महिमा है, अकाल पुरख की सिफत सलाह है। सुलही खां कौन से? ये पठान से, ते जहांगीर का अहलकार से। अज भी वेखे साधु संत कोई बचिया होवेगा, नहीं तो किसी ना किसी मिनिस्टर नाल कोई ना कोई जुड़े है। हर साधु संत उन्होंने डेरिया में भी अक्सर जाते, लोग वड्डे वड्डे लीडर जुड़े हुए ने, उदों भी जुड़े सन। पृथ्वी चंद जुड़िया होया से वड्डे वड्डे अहलकारा नाल। पृथ्वी चंद जुड़िया से, उन्हें जोड़ लिया सुलही खान, प्यार कर लिया। उन्हें कहा जदों मैं आया बहाना कोई बने, मैं अमृतसरों अर्जन देव नू फड़ के लै जावांगा। बस उस तो बाद गुरियाई गति तेरी। साहब गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसरों परिवार नू वडाली लै गया। अमृतसर परिवार नहीं रहन दिता, अमृतसर पृथ्वी चंद वास्ते कर दिता। लै कराया तू लै लै, गुरु भी बन सकने ते बन, एक बचन हो। गुरियाई गद्दी कोई आसन नहीं, आसन होंदा ते कोई भी कब्जा कर लेंदा। गुरियाई गद्दी कोई तख्त नहीं ते कोई मल के बह जावे। गुरियाई गद्दी कोई शहर भी नहीं। गुरियाई गद्दी बहुत सम्मति नाल भी नहीं मिलती। साहब गुरु नानक देव जी ने गुरियाई गद्दी बख्श कीती गुरु अंगद देव नूं। वो करतारपुर वेला करके सिंघासन रह गए, उत्थे ही आसन रह गए खाली। आस एक कमर कसा बनिया होया ते एक पोथी, कहा कि पोथी पढ़ के प्रचार करना ते कमर कसा बन के सेवा करनी। ये दो दाता लेके आ गए। हुण गुरियाई गद्दी ते बख्शिश है, वो ते नाल आ गई। होर अगे चलिए, दातू जी ने जदों आके गुरु अमरदास नूं लत मारी ते तखत तो थले सुट दिता। सतगुरु अमरदास की उम्र 77 साल सी उस वेले। 77 साल दे बजुर्ग नूं इन्हां वेखिया कि इन्हां नूं मेरे पिता गुरु ने भी मत्था टेकिया। गुरु अंगद देव ने संगतां चुक रही ने, गुरु नानक स्वरूप ने नहीं लत मारी ते कहा निकल जाओ इत्थों। आ गया बासर के आ गया वेला कारा है। लै तख्त दातू, जे बह सकना है गुरु बन सकना है तो बन जा। हुण जेकर तखत ही गुरियाई होंदा तो उते दातू मल लई, सिंघासन ही होंदा दातू ने मल लिया। एक बंदा भी मत्था टेकन नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आखिर समान बन के शाम नू खनूर साहब नू चला गए। होर अगे चलो, बड़ा यतन

कहूँ पूर्ण राजा बैठा कहूँ से उठ प्रसन्न कर बैठा सगरी सिर दिखाए अम्बव आदि जुगा स्वरूप से अम्बव का रक्षा मेरी तुम करो सिखो बाल सिख संग करो दूर जित उठवा तो तुपा।